0: जाई बेड भूक लगता खाजा बाकी नहीं ए काकी फिर आयल बाटी राम राम काकी
1: राम राम हो नानी मजा बाटो ऐसा ले छाई भारी हो से अकल बाजे आप भली भुआस कर दिया परल है समय में भुआस कर दे से अपन जिम्मेवारी फिर वरी ना और जनक बात फिर सुननी पड़ना
2: आ दीदी फे ऊ बेला अपन कटरा पहना इच्छा रह छुट्टी में भुआस कर दे मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्त फिर डोरिया नी चाहू दीदी मई चाह ई बाल विवाह कर नी चाहू ई बाल विवाह निकरण दीदी
3: शारीरिक को मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कई देना से डायो बच्चा दुनू के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकत ऊ हिंसा के शिकार बन सकत उही है विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई से थीस ऊ रोजगार फिर नहीं पाए ओ गरीबी में बांच बाध्य हुई पड़थिन नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई असिन कराई से 3 वर्ष सम कैद ओ 30,000 रूपया सम जरिमाना हुई सकत ओ असिन भुआस कानूनी मान्यता
1: टीकापुर नगर पालिका वडा नंबर 3 से देगिलक जनहित में जारी संदेश
4: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज था का कना हो बाबा के उस तबातीन गति लो ठाउं से झोला अंदर से तो लड़का सामान नहीं है रे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा था
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला अन लगाती ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटस बातें ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ ससानो कुरामा टना भुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलतमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असोज 17 गते 24 गते र 31 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला टिकापुर अस्पताल टिकापुर कैलाली

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए।
1: फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
2: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
1: फोन नंबर कटा हो तो
2: ली डायल करी 97 620 20 300
1: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
2: थे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 620 20 300 और 98 656 92 026।

0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयकै अनुरोध।
1: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडावासी दादु भैया दिदी बहिनी हुक्रे सड़क के किनार में पशु चौपाए नई बान देवी सड़क किनार में माल वस्तु नई कुरा देवी साथे सड़क किनार में पशु चौपाए बांध के ढुंगा बालुआ गिट्टी मल कुरा के दुर्घटना हुईले से एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुक्रा लेह पर्ना बा।
0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय लाइकपुर।
2: कादान छै उडन्या चरी दिनरात भौतारी आइ गयो रेडियो खोल देउडा चौतारी आइ गयो रेडियो खोल देउडा चौतारी।
3: झल्को आउँदो बाह्रै मास दिनकाटु म क्यारी बाटो हेरी बस्याकी छ घर मेरी प्यारी।
2: एकडाली बाजगुर आउँछको एकडाली साजको यति सौराई क्या लाग्दो छ परदेशी बाजको यति सौराई क्या लाग्दो छ परदेशी बाजको।

समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के मिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज घर में यहां उक्रन स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। आज से पश्चिम नेपाल के तमाम स्थान में वर्षा होने संभावना, रलकोर से सतर्क रहे पर्ना, अविरल वर्षा पाछे बाढ़ पहिरो में पर्के 6 जन की मौत। बाल बालिका संतुष्ट बनेना दिवा खाजा के मेनू निर्माण, साई कृपा चिया दूषित भेटागिलक बजार मन से तत्काल फिर्ता करने निर्देशन। उपेन्द्र विद्या मंदिर कैंपस व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष में धनंजय रिमाल विजय। हाल देशभर मनसूनी वायु के साथे पश्चिमी वायु के फे आंशिक प्रभाव पड़ल बा। साथे भारत के उत्तर छत्तीसगढ़ ओ समेत उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में समेत रलक न्यून चापीय प्रणाली उत्तर पश्चिम ओर सर्ती भारत के दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश ओर समेत जैना हो। आगामी 6 घंटा में कर्मशः कमजोर होके न्यून चापीय क्षेत्र में परिणत होने संभावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनायल बा। हाल देशभर आंशिक मौसम बदलल बा। गंडकी लुम्बिनी कर्णाली और सूर्यपश्चिम प्रदेश के ढेर स्थान तथा बागमती प्रदेश के कुछ स्थान के साथ ही कोसी और मध्य प्रदेश के कम स्थान में हल्का से लेकर मध्यम पानी पड़ते रहल बा। गैल 12 घंटा में समेत बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के ढेर स्थान में भारी से लेके अति भारी वर्षा के संभावना बा। गैल 12 घंटा में सबसे ढेर चितवन के माड़ी क्षेत्र में 195.8 मिलीमीटर वर्षा मापन कर गिर बा। उस्तक टनहू के नवलपरासी के पूर्व उस्तक पश्चिम पाल्पा रूपंदेही लगायत के जिला में गैल 12 घंटा में 150 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा हुई पूर्वानुमान करल महाशाखा से जनायल बा। इस क्षेत्र में भारी से लेकर अति भारी वर्षा हुई पाछे नारायणी तिनाव उस्तक बाणगंगा लाल बखैया लगायत के लदिया में पानी के सतह चेतावनी तह के से लेके खतरा तह सम्पुगल बा। वर्षा हुई पाछे कर्णाली लदिया जल मापन के सतह फे समेत बढ़ल बा। कर्णाली चिहापानी के रेखरत अनुसार 8 मीटर 1 सेंटीमीटर पानी पुगल बा। कर्णाली चिहापानी में 10 मीटर चेतावनी तह 10 मीटर 80 सेंटीमीटर पुगना है। तटीय क्षेत्र के नागरिक हुकरन खतरा के तह मानगिल बा। आज फेसूर पश्चिम प्रदेश सहित देश के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होना कहल बा। ई क्षेत्र में भारी पानी नहीं पर्ना रलसफेन मध्यम सम वर्षा होना संभावना देखाइले ओर से सचेत रहना नागरिक हुकरन मौसमविद संजीव अधिकारी आग्रह करले बाटिंग। अविरल वर्षा के कारण यह असोज 8 गति से देश के तमाम स्थान में आयल बाढ़ पहिरो लगायत के समेत मपर के हालसम 6 जहन के मौत हुईलवा कलश विपद से बागमती और लुम्बिनी प्रदेश के 2-2 गंडकी और कर्णाली में 1-1 जहन के मौत हुईलवा कलश। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अभिनारायण काफले जानकारी देले बाटे। बाढ़ पहिरो में पर्के 2 जने घायल हुई बाटे। घायल हुकरन के लाग स्थानीय अस्पताल में उपचार हुई रहल जनायल बा। प्रहरी से 4 से 7 जन के उद्धार करल बा। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग से साई कृपा चिया उद्योग के समेत 1 किलो के उत्पादन दूषित देखेलक ओर से बाजार मन से तत्काल फिरता करना निर्देशन करल बा। साई कृपा चिया उद्योग रूपंदेही से जुलाई 2026 में उत्पादन करल ब्याज नंबर 83D में समेत 05 के समेत साई कृपा गोल्ड चिया है समेत दूषित खाद्य वस्तु पदार्थ में समेत घोषित करती फिरता बोला गिलेखो। खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियंत्रण एन 2081 के दफा 38(2) के प्रावधान बमोजिम नै फिर्ता बोलैन उपदफा समेत 4 बमोजिम बिक्री वितरण नै गरेन निर्देशन देहल अस्तक व्यवस्था अनुसार महानिर्देशक संजीव कुमार कर्ण से निर्देशन कर लखु विभाग से जारी विज्ञप्ति में कहलबा खाद्य प्राविधि तथा गुण नियंत्रण कार्यालय भैरव के वरिष्ठ खाद्य अनुसंधान अधिकृत अनुप हलवाई से समेत चियामा रंग मिसैलक भेटागिलक को उचिया ब्याज के चिया है फिरता बोलैना लगागिलबा व्यवसाय से गलती करलक उपभोक्ता हुकरन असर करती जैना बातमा नियामक निकाय से छूट नहीं देना अधिकारी हुकरन के कहेबा कानून से टोकल विपरीत समेत ढेर मुनाफा लेना उद्देश्य से उत्पादन करके गैर जिम्मेवार काम करलक उपभोक्ता हुकरन के स्वास्थ्य पर खिलवाड़ करलक को ऐसी उत्पादन है कर्रा से कर्रा कार्रवाई करना उपभोक्ता हित संरक्षण मंच नेपाल के उपसचिव उपमहासचिव तथा अधिवक्ता रिंग ऋषि काफ्रे समेत श्रृंग ऋषि काफ्रे बटोले त्रुटिपूर्ण उत्पादन है समेत बजार के तमाम तह हुई ग्रामीण बजार सम पुगा सकल रलकुर्सी विक्रेता हुकरा ईमानदार नहीं हुके आम उपभोक्ता हुकरा प्रयोगकर्ती रलक संभावना रहलक बटागिलबा एक लाख स्थानीय बाजार अनुगमन जारी रहलबा। खोजखर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पाद से फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समिति को संभावित भारी वर्षा र बाढ़ी संबंधी अत्यंत जरूरी सूचना। आदरणीय नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार आउँदो असोज 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत यस क्षेत्रमा बढ़ी अथवा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। टीकापुर नगरपालिका कर्णाली नदी र स्थानीय नदी कुलाहरूको तटीय क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले अत्यधिक वर्षाका कारण आकस्मिक बाढ़ी डुबान र कटानको उच्च जोखिम देखिएको छ। तसर्थ भञ्जनको क्षति हुन नदिन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा विपद व्यवस्थापन समिति हार्दिक अपील गर्दै निम्न बमोजिम सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्दछौ। मुख्य सावधानी तथा पूर्व तयारीका उपायहरू: नदी किनारमा नजाउ, बाढ़ीको समयमा माछा मार्न, काठ दाउरा संकलन गर्न वा पौडी खेल्न कर्णाली नदी र स्थानीय खोला खहरेहरूमा नजाउ। महत्वपूर्ण कागज तथा सामान सुरक्षित राखौ। आफ्नो नागरिकता, जग्गाधनी पूर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र, औषधि र नगद गहना जस्ता बहुमूल्य सामानहरू वाटर प्रुफ झोलामा राखेर घरको सुरक्षित वा अग्लो स्थानमा राखौ। बाली नाली भित्राउन हतार नगरौ। धान भित्राउने मौसम भए तापनि मौसमको यकिन नगरी कृषि कार्य नगर्नुहोला। काटेको धान भए तत्काल सुरक्षित ठाउँमा सारौ। होचो स्थानमा व्यवसाय भएका व्यवसायीले सुरक्षित स्थानमा सामानको व्यवस्थापन गरौ। विशेष वर्गको ख्याल राखौ। बाढ़ी वा डुबानको जोखिम बढेमा घरका वृद्ध वृद्धा, बालबालिका, गर्भवती महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थान वा सामुदायिक आश्रय स्थलमा लैजाने तयारी गरौं। आवश्यक जानकारी तथा सहयोगका लागि वडा अध्यक्ष, नगर प्रहरी, विपद सम्पर्क व्यक्ति तथा सुरक्षा निकाय र सरकारवालासँग समन्वय गरौं। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।
2: यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
3: तपाईँ एक्लो कहाँ छ श्रेया, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
2: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ
3: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त? जब म निस्केँ, काम गर्न थाले, अनि पो कमाइ छ त? यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन, हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
2: ओहो, तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकेछस् त यार। अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
4: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
5: अम्बिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
6: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
5: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
0: सरकार से सरकारी विद्यालय में प्रहिया कक्षा 5 सम के बाल बालिकाउकरण केलाक दिवा खाजा केलाक अरबौं खर्च गर्तिरलस फेन खाजा खाके फेर संतुष्ट समेत नै देखगिलबा। सरकार से खाजा बाफत के प्रति विद्यार्थी 20 रूपया देना करलबा। मनोविद्यालय में भर अवस्था अनुसार के व्यवस्था हुई नै सकल के हो। कतिपय विद्यालय में हमेशा भुटल मकै हलुआ केरागुड़ी केल खुवैना चलन बा कलसे खाजा पकाएके भान्से समेत अभाव रहल ठाउँमा भर भाँडाकुँडाके अभाव रहल जस्तः समस्या देखाके समेत खाजा पसलसे पोका पारके मगैना चलन रहल बा। प्रधानाध्यापक शिक्षकके सक्रिय रहल विद्यालयमा भर मजा खाजा फेर समेत खवागिल बा। कर्णाली मावि टीकापुरके प्रधानाध्यापक धर्मराज शर्मा साप्ताहिक रूपमा सूची बनाके खिचडी उसके छोला मासु भात अण्डा उसके स्याउ खवै नकरलो अन्धा ओस्याउ समेत पाइल दिन अकेठो समेत पर्न रलक ओसे अघैना समेत नै सेकल बटैले बाटै पुस्तक खड्ग स्मृति मावि के प्रधानाध्यापक झनकराज ओझासे आलु चिउरा पुस्तक खिचडी फलफूल चना ओ समेत अन्धा मकै मिक्स समेत चिउरा ओ समेत महिनामा एक दिन मासु फे समेत खवै नकरल बटागिल बा। धेर विद्यार्थीहरूका एक विद्यालयके समेत मजा नतिजा देना समेत करलक बाकलसे धेर विद्यार्थी रलक ओ समेत औरा स्रोत नै रलक विद्यालयमा सामान्य खाजा देना करल बाकलसे ऊ विद्यालयमा प्रधानाध्यापक हुँक्रा समेत बटैटियाल बाटै कर्णालेश्वर माविके प्रधानाध्यापक शारदा तिमिलसेना पहिला जिल्ला शिक्षा से डिटेलक 3 महिनाके खर्च पहिले नै मिले मन अब उधारो समेत लेहपर्न रलक ओरसे महँगा हुइती रलक ओ खाजा के रूपमा फलफूल जीरा राइस सिजन अनुसार समेत मासु गेडागुडी समेत खोइच रहल बटोइले बाटै त्रिभुवन मावि मौरन्याके प्रधानाध्यापक टेक बहादुर शाह त्यो खाजा व्यवस्थापनमा हम्मे हम्मे हुइती रहल बटोइले बाटै खाजामा एकरूपता नै हुइल पाछे बेनु बनाके लागू गर्न हो गुणस्तर कायम करे पर्ना आवाज उत्ती रहल बा। टीकापुर नगरपालिका के स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य अधिकृत कमल बहादुर रावल से पैसा कम रलसे फेन परिणाम कम हुइना रलसे फेन देना खाजा के गुणस्तरीयता हुई पर्ना बटोइले बाट शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थी डेव खाजा से विद्यार्थीकरण के टिकाऊ दर बढ़ना पोषण बढ़ल और भूख कम करैलसे सिकाई उपलब्धि हुई रहल बटोइले बाटै बाल बालिका के क्षेत्र में काम करती रहल संस्था विकास के लग युवा के बद्धता यार्ड से खाजामा एक रूपता हो गुणस्तर चहलक पालिका में दिवा खाजा के मेनू बनैना छलफल आयोजना समेत करती रहल बा। यार्ड के पहल में कैलाली की घोड़ाघोड़ी नगर पालिका ओ समेत भजनी नगर पालिका में खाजा के मेनू तैयार होके लागू हुई रहलक बाल समृद्धि के लग एकीकृत विकास परियोजना के कार्यक्रम के सहजकर्ता रतनलाल चौधरी बटोले बाटै कैलालीमा और पालिका जस्तै टीकापुरमा फे जो खाजामा एक रूपता गुणस्तर कायम गर्न हुइलक ओरसे छलफल मनसे मेनू तयार करगिलवा। टीकापुरमा फे समेत बनल मेनू अनुसार सोमबार खिचडी उसक विकल्प के रूपमा हलुवा मंगलबार फलफूल विकल्प के रूपमा दही चिउरा आलु चिउरा बुधबार हलुवा खीर उसक वा समोसा विकल्प के रूपमा फलफूल बिहीबार अण्डा मासु चिउरा विकल्प के रूपमा जीरा राइस शुक्रबार गेडागुडी विकल्प के रूपमा पकौड़ा समेत धरगिलबा। नगरपालिका के जनप्रतिनिधि शिक्षा महिला बाल बालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तथा प्रतिनिधि हुक्रा विद्यालय के प्रधानाध्यापक हुक्रा भान्से सहयोगी हुक्रा फे सहभागी भेलासे विद्यालय से आब्बा फे समेत खोइते रलक खाजा के बार अनुसार खोइना सहमति फिलबा। निरन्तर वर्षा पाछे देशभर बाढ़ पहिरो सड़क दबजिना उसका खोलवा उल्लदिया के आसपास में दुबान जोखिम बरलबा

0: भावित बनल भा स्थानमा पहिरो पसगुरुवाके फेर खुलैन प्रयास सुटी रहला से फेन वर्षा नै रूकले गोसे सड़कमा समेत पुनः अवरूद्ध जोखिम कायम रहल बता गेल बा। अविरल वर्षा के कारण पहिरो गिरके मुगली नारायणगढ़ सड़क खण्ड अवरूद्ध बनल बा। लेडो साइड के पहिरो नामसी खोलवा के पुल ऊपर से समेत बहलक और सातवार के बिहान के 7:55 जाय बेर से सड़क अवरूद्ध बनल। सड़क डिवीजन कार्यालय भरतपुर से जनायल बा। खोजखबरमा एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फेर से भी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
2: मैं नहीं जाइस वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू
1: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू डॉक्टर में अब भी जाए।
3: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाँत खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: विश्राम पासे फिर से स्वागत बा। टीकापुर स्थित वीरेन्द्र विद्या मंदिर कैंपस व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष में धनंजय प्रसाद रिमाल विजय हुलबाट रिमाल 37 मत प्राप्त करके विजय हुई लेखोई। निर्वाचन अधिकृत दंड पानी पोखरेल के अनुसार अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा दयाराम सन्ज्याल 9 जगदीश्वर पण्डित से 5 मत प्राप्त करल बाट कुल 74 जने मतदाता रहल। निर्वाचनमा 52 मत गिरल रह। अध्यक्ष निर्वाचनमा निर्वाचित हुई पाछे और सदस्य भर निर्विरोध निर्वाचित हुई रह। प्रत्येक वर्ष असीवन कृष्ण प्रतिपदा से लेके शुरू हुई सूर्यश्राद्ध अर्थात पितृपक्ष से आज से समेत विधिवत रूप में आरंभ करती बाटे। प्रारंभ के दिन आज समेत प्रतिपदा तिथि में श्रद्धा समेत कर्णुया नेपाल पंचांग निर्णायक समिति से स्वीकृत देहलबा कलश पात्रो पंचांग में उल्लेख करगिलवा। प्रतिपदा तिथि श्रद्धा के समेत पिंडदान ओस्तक दोपहर से पाछे करपर्णा समिति के पूर्व सदस्य एवं धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डॉक्टर देवमणि भट्टराई जानकारी देले बाटें। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से आज पश्चिमी नेपाल के तमाम स्थान में वर्षा होने संभावना रहेको से सतर्कता रहना अविरल वर्षा पछि पहिरो मा पर्के 6 जन के मौत। बाल बालिका संतुष्ट बनैना जीवा खाजा के मेनू निर्माण साईक कृपा सिया दूषित भेटागिल बाजार से तत्काल फिरता करने निर्देशन। वीरेन्द्र विद्या मंदिर कैंपस व्यवस्थापन के अध्यक्ष मा धनंजय रिमाल विजय नीता बकलत थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर समस्या भी अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रह विराम।
5: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टीकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
6: टिचिङ हस्पिटलबाट एमबी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
5: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
6: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
5: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
6: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
5: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
6: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
5: आकस्मिक रोग

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झलै फटाका आजी ठ काकना हो बाबा फि ओष्टबाटिन गटिलो ठाउँ से झला आनला से त लड़का सामान्य हेरै
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुई थी जलम भर भर बराइती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेराकै ठ कबु पेन्सिल हेराकै ठ कबु झलै फटाकै ठ बढ़िया ठाउँ से झला लान नि छिक्ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो त कहाँ टीकापुर म रलक रडगैया झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पियरी थी ना कबु पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबु पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रडगैया झोला उद्योग में रडगैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: लक्की ट्रेडर्स टीकापुर में एनटीसी र एनसीएल को सिम कार्ड ई सिम पाइनु का साथ है फोटोकपी लिमिनेशन प्रिंट बैटरी र बैलेंस ट्रांसफर पनि गरिन्छ
5: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणाली द्वारा दर्ता र मोबाइल का संपूर्ण पार पुर्दा पाइनु का साथ है मर्मत पनि गरिन्छ साथै 5 मिनेटमा पासवर्ड साइज को फोटो निकालिन्छ मोबाइल में फोल्डर हालने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ
4: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा संचालक खगेन्द्र चौधरी सम्पर्क नम्बर 9868551000
6: एल्विस एल्विरा टेरसमा डिजाइन डिजाइनका साडी सुट कुर्ती पलाजा र थानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन् एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला
4: एल्विस एल्विरा टेरस सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाडि टीकापुर कैलाली संचालक सुजिता श्रेष्ठ सम्पर्क नम्बर 9811 67 38 87

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा फिर उस गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरती बर रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: आज तिमी मेरो वरिपरी किन घुम्दैछौ छोरी
4: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
3: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
4: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि
3: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
4: न्यू अछाम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
5: न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स मा नया नया डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुमका छटके तिलहरी बाला चूरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिनारसन का गरगनारो पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98688-14-799 98-24-60-25-32 अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98-24-67-28-25
6: हार्दिक सुनचानी पसलमा छत्के तिलहरी माइले तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चापकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन् एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला
7: हार्दिक सुनचान्दी पसल सरकारी अस्पतालको भित्री रोड सञ्चालक शंकर साहु सम्पर्क नम्बर 98-48-42-91-74
8: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
9: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
8: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
9: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
8: अब त म ढुक्क
5: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरा पारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
9: मोबाइल नम्बर 98-48-51-43-26 जमरा पारी टिकापुर कैलाली

0: हेलो बहिनी, कता हो? तिमीलाई थाहा छ कि नै, सीजी कम्पनीको वाईवाई जिंक 15 रुपियाँमा एक पेटी ₹560 उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ। तिमीले कतिमा किन्यौ?
1: मैले त एक पेटी चाउचाउ ₹600 किने।
0: 600 रुपियाँ किन हाल्नु पर्यो? 560 त ब्लक नम्बर 14 रहेको हरिलाल किराना पसलमा ₹15 वाला चाउचाउ पाइन्छ, त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ, र त्यस्तै ₹25 क्लासिक चाउचाउ र ₹35 चाउचाउ ₹2500 आउँदैछ नि, त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ। फेरि 500-600 रुपियाँ वाईवाईमै किन हाल्ने? 460 मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ, त्यो पनि वाईवाई सीजी कम्पनीको, र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ। भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुहोस् है। होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ। आधिकारिक विक्रेता
1: हरिलाल किराना पसल, ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड, टिकापुर, कैलाली। संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट। सम्पर्क नम्बर 98 48 40 22 41।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था। वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुंजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
0: लक्ष्मी आभूषण भण्डारमा छड्के तिलहरी, माइली तिलहरी, रामलीला झुम्का, पिजडा झुम्का, बाला, औठी, पेन्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। लक्ष्मी आभूषण भण्डार, सिद्धार्थ चौक, टिकापुर, कैलाली। संचालक प्रकाश भण्डारी। सम्पर्क नम्बर 98 48 53 61 95। चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक टिकापुरमा
5: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबारका दिन
0: कोहलपुर मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ मानसिक लागू औषध तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहन बेलबासे MBBS MD बिरामी जाँच गर्न चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
5: दिइने सेवाहरू: बेला बेलामा मुटु ढुकढुक हुने, हात खुट्टा काप्ने या चिसो हुने, धेरै पसिना आउने, मनमा छटपटी हुने, ज्यादै झस्कने, तर्सने या डराउने भएमा,
0: असामान्य रूपमा धेरै लामो समयसम्म टाउको दुखी रहेमा,
5: बढी बिसाउने, झिजो मान्ने, झर्कने, जिउ दुख्ने, दुब्लाउने, निन्द्रा नलाग्ने, भोक नलाग्ने भएमा,
0: काम काजमा मन नलाग्ने, त्यसै दिक्क मानेर बस्ने भएमा,
5: असामान्य रूपमा एउटै कार्य बारम्बार दोहोर्याउने भएमा,
0: धेरै रक्सी खाने वा लागु पदार्थको सेवन गर्ने भएमा,
5: आत्महत्या गर्ने इच्छा उत्पन्न हुने तथा आत्महत्याको प्रयास गरेमा,
0: याद गर्नुहोस् है,
5: यदि यस्ता लक्षणहरू मध्ये कुनै एक लक्षण मात्र पनि धेरै लामो समयसम्म लगातार देखा परेमा यसले कुनै प्रकारको मानसिक रोग लागेको हुन सक्ने संकेत गर्दछ।
0: त्यसैले सम्बन्धित बिरामीहरूले नाम दर्ता गराई ढुक्क हुनुहोस्।
5: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार। साथै हाम्रो यहाँ दैनिक महिला डाक्टर संज्ञा खनाल MBBS द्वारा बिरामी जाँच तथा उपचार गरिन्छ।
0: स्थान चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 091-560-856 र 98-580-29700।

0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्ना त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
2: अत्यन्त जरुरी सूचना, मिति 2083 साल असोज 9 गते से 11 गते सम्म जानकी गाउँपालिका के क्षेत्रमा बाढीकै जोखिम रहला खुइलक महर्से सबको गाउँपालिका वासी हुन हार्दिक अर्जी गरती। आपन खाद्यान्न सामग्री, महत्वपूर्ण कागजात, नगद तथा जिन्सी सामान, लत्ता कपड़ा, दवाई लगायत के अत्यावश्यक सामान सुरक्षित ठाउँमा धर्बी। घर व आन्दर पान्दर के अवस्था जोखिमपूर्ण हुइसकना हुइलक महर्से आवश्यक सतर्कता अपनाकन सुरक्षित ठाउँमा बैठक लागि अनुरोध गरती। सम्भावित बाढ़ी के जोखिम हन मध्यनजर प्रति समयमा सुरक्षित रही, सतर्क रही वो एक और जहन हन सहयोग करी। जानकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका के कार्यालय दुर्गौली कैलाली।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
6: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
7: कागजात हराएको सूचना। टीकापुर नगरपालिका वडा नंबर 1 का कमला सुडारी को पासपोर्ट कक्षा 8-10-12 का मार्कशीट लगायत का कागजात शुक्रवार दिवसो 12 बजे तीर टीकापुर खड़क चौक देखि जमरा पारी पेट्रोल पंप सम्म जाने क्रम में बाटो में हराएकाले पाउनु हुने महानुभावहरूले यहाँ दिएको फोन नंबर वा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम में बुझाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। पाउनु हुने महानुभावहरूलाई पुरस्कार को व्यवस्था गरिएको छ। सम्पर्क नम्बरहरू 9764-26-70-90 र 9815-60-67-05।
8: चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक टीकापुरमा
9: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबारका दिन
8: कोहलपुर मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ मानसिक लागू औषध तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहन बेलबासे एमबीबीएस एमडी बिरामी जाँच गर्न चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक टीकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
9: दिइने सेवाहरू, बेला बेलामा मुटु ढुकढुक हुने, हात खुट्टा काप्ने या चिसो हुने, धेरै पसिना आउने, मनमा छटपटी हुने, ज्यादै झस्कने, तर्सने या डराउने भएमा,
8: असामान्य रूपमा धेरै लामो समयसम्म टाउको दुखी रहेमा,
9: बढी रिसाउने, झिजो मान्ने, झर्कने, जिउ दुख्ने, दुब्लाउने, निन्द्रा नलाग्ने, भोक नलाग्ने भएमा,
8: काम काजमा मन नलाग्ने, त्यसै दिक्क मानेर बस्ने भएमा,
9: असामान्य रूपमा एउटै कार्य बारम्बार दोहोर्याउने भएमा,
8: धेरै रक्सी खाने वा लागु पदार्थको सेवन गर्ने भएमा,
9: आत्महत्या गर्ने इच्छा उत्पन्न हुने तथा आत्महत्याको प्रयास गरेमा,
8: याद गर्नुहोस् है,
9: यदि यस्ता लक्षणहरू मध्ये कुनै एक लक्षण मात्र पनि धेरै लामो समयसम्म लगातार देखा परेमा यसले कुनै प्रकारको मानसिक रोग लागेको हुन सक्ने संकेत गर्दछ।
8: त्यसैले सम्बन्धित बिरामीहरूले नाम दर्ता गराई ढुक्क हुनुहोस्।
9: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार, साथै हाम्रो यहाँ दैनिक महिला डाक्टर संज्ञा खनाल एमबीबीएस द्वारा बिरामी जाँच तथा उपचार गरिन्छ।
8: स्थान चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 0915608056 र 9850829700।
10: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: पैसा तथा पर्स भेटिएको सूचना। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर एक जमरा पारी मेन्थादेखि समितिपुर जाने बाटोमा मेरीगोल्ड स्कूलको बसमा विद्यार्थी पुर्याउन जाने क्रममा केही दिन अघि बेलुका 4 बजेतिर कालो पर्स, औषधि र केही पैसा भेटिएकाले सम्बन्धित व्यक्तिले लोकबहादुर सारू मगरको मोबाइल नम्बर 97 44 28 72 वा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएममा सम्पर्क गरी बुझी लैजान हुन अनुरोध गरिन्छ। पैसा दावी गर्ने व्यक्तिले पर्समा रहेको जम्मा रकम भन्न सक्नुपर्छ।
1: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
2: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
1: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनाई लाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टू फे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहो र घुम जाए तो
3: यूपी भिसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के सन्ध्या 5 बजे थारू भाषा खोज खबरमा आफ्नो कन स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम अपनाउका अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो में फिर सुन्ती रहल बाटे खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से दुर्गौली में कृषि हाट बजार संचालन हुईबेर कृषक को उपभोक्ता दुनू जहनना फायदा नारायणगढ़ मुरिंग सड़क संचालन में पृथ्वी राजमार्ग फिर आज संचालन में नन्ना सुदूरपश्चिम में कमजोर बंतीगेल न्यूनचापीय प्रणाली घटल भारी वर्षा की संभावना राष्ट्रीय युवा उद्यमी मंच कैलाली के कर अनुपालन संबंधी लर्निंग इवेंट संपन्न हुई आप खोज खबर विस्तार में जानकी गांवपालिका कृषक के कृषि उत्पादन बजारीकरण हन सहयोग सहज भए कैख दुर्गौली में कृषि हाट बजार संचालन करती एल्बा कृषि हाट बजार संचालन में आयल पाछ कृषक को उपभोक्ता दुनू जहनन फायदा पुगलबा गांवपालिका कृषक के उत्पादन कलक कृषि उपज बिक्री भए कैखन दुर्गौली में हप्ता के दुई दिन आईतवार व बिहीबार बजार संचालन में अनलक निर्णय करलबा ओह अनुसार कृषि हाट बजार हप्ता के दुई दिन संचालन हुईती रहलबा दुर्गौली में कृषि हाट बजार संचालन में आयल पाछ कृषक हुकन आपन बारी में उत्पादन हुईलक तरकारी बिक्री वितरण करना सजिलो हुईबेर कृषक खुशी हुई दुर्गौली के फूलकुमारी चौधरी आपन बारी उत्पादन हुईलक तरकारी कृषि हाट बजार लागल पाछ बजार में ब्याच पाइल पाछ आपन सजिलो हुईलक बटुलबाट फूलकुमारी चौधरी जस्त कुसुम चौधरी फे कृषि हाट बजार मन बारी में उत्पादन हुईलक तरकारी व बेर्ना ब्याच ऐठ कृषि हाट बजार संचालन निमिबेर वहां पैला टीकापुर गांव से दूर ब्याच जय परल रहिन तर हप्ता के दुई दिन कृषि हाट बजार संचालन में आयल पाछ वहां हन सजिलो हुईल बाटिन स्थानीय बंद्या चौधरी फे अपना बारी में उत्पादन कलक तरकारी स्थानीय कृषि हाट बजार में ब्याच पाइल पाछ खुशी लगलग बटुलबाट गांव में कृषि हाट बजार संचालन में आयल पाछ तरकारी किनक खैना उपभोक्ता नफे सजिलो हुईलबा गांव में उत्पादन हुईलक ताजा तरकारी किन पाइल पाछ उत्पादन कना कृषक को आपन जस्त उपभोक्ता फायदा हुईलक दुर्गौली के महेन्द्र बम बटुलबाट भगतपुर के दिनेश थारूफे गांव में हप्ता के दुई दिन कृषि हाट बजार संचालन में आयल पाछ आपन तरकारी किन दूर जाइनी पर्लको ताजा तरकारी किन पैलक बटुलबाट दुर्गौली में 2077 साल थेसे कृषि हाट बजार संचालन हुई टियालबा असिक कृषि हाट बजार संचालन हुईना कृषक ओ उपभोक्ता दुनू जहन के लागि फायदाजनक बा वर्षा के कारण कुलेखानी जलविद्युत आयोजना के इन्द्र सरोवर तालमन पानी के सतह बढ़ती गेलपाछ हेटौड़ा काठमाण्डू जोना सड़क मन यातायात संचालन में रोक लगाइल्बा जिला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर सूचना जारी करती जलाधार क्षेत्र में हुईटी रलक लगातार के वर्षा के कारण सुरक्षा सतर्कता अपनाइटी यातायात संचालन में रोक लगैलक जनैलबा जिला प्रशासन जिला प्रमुख जिला अधिकारी बसंत अधिकारी के अनुसार जलाधार क्षेत्र में हुईटी रलक लगातार के वर्षा विश्लेषण कैक विद्युत प्राधिकरण साइरन बजा का सुरक्षा के मापदंड पूरा करक जौन समय में फे ताल के ढोका ख्वाला सेक्ना बटुटी सड़क बंद करगिलक बटुलबाट वहां सुरक्षा सतर्कता अपनाईटी भैंसे हुईटी देउराली सिस्नेरी काठमाण्डू उहर ओ पालुंग हुईटी सिस्नेरी देउराली हेटौड़ा उहर चलना सक्कू सवारी साधन हुकन यातायात में रोक लगैलक बटवा गिल्बा प्रशासन जारी कलक सूचना अनुसार आज 11 गते दिन का 4 बजे थेसे काल 12 गते बिहान 5 बजेसम ऊ सड़क खण्ड मन कोनो फे किसिम के सवारी साधन संचालन नै करा व नै कराई कड़ा निर्देशन दे गिल्बा अति आवश्यक काम पर्कन काठमाण्डौ जैना व हेटौड़ा उहर जैना यात्रु हुक्र टोकगिलक समय भीतर और त्रिभुवन राजपथ में सवारी आगमन व्यवस्थापन संबंधी सूचना अनुसार यात्रा कर अनुरोध कर गिल्बा संग ऊ राजमार्ग मन यात्रा करना यात्रु तथा सवारी चालक हुकन जिल्ला प्रशासन कार्यालयकी आधिकारिक सूचना हेर्क कलक यात्रा कर कराई प्रशासन विशेष आग्रह कलबा आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय सूचना जारी गर्दी त्रिभुवन राजपथ हुइटी हेटौडा से काठमाडौँ जैना काठमाडौँ हुइटी हेटौडा जैना सवारीकै लागि अलग अलग समय टोकलबा प्रशासन हेटौडा से काठमाडौँ जैना सवारीकै लागि चौकी टोलसे असोज 11 गते दिनका 2 बजे थेसे सन्ध्या 6 बजेसम्म असोज 12 गते बिहान 4 बजे से 10 बजेसम्म तथा रातका 9 बजे से 13 गते बिहान 1 बजेसम्म असोज 13 गते दिनका 2 बजे से सन्ध्या 6 बजेसम्म सञ्चालन गर देनाकैकन समय निर्धारण गर्लबा। खोजखबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछ फेरफेन आइने बाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होस् या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ।
2: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: के तपाईलाई थाहा छ,
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र
4: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौं।
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
3: के छ त विकल्प?
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
4: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
5: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
6: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
5: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
5: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
6: ईसीजी सेवा,
5: डिजिटल एक्सरे सेवा
6: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
5: फोन नम्बर 98484 27359 र 98482 43 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
7: सुन्नुहोस् न, यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु। सिर्चना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
8: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
7: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
8: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
7: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
8: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
7: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
8: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 98095 43 893।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। नारायण मुङलिङ सड़क खण्ड सञ्चालनमा आइल बा। अविरल वर्षाकै कारण नाम्सी खोला पुलमा थुपार्गिलक लेडो सहितके पहिरो हटाएलसँग पोखरा उहर्जैना सवारी तथा ढुवानीके साधन चल लागलबाट सड़क डिभिजन कार्यालय चितवनके अनुसार बिहान 7:55 बजे ऊ खोलवामा लेडो सहितके पहिरो खसल रह कार्यालयके सूचना आधिकारिक इन्जिनियर कृष्ण आचार्यके अनुसार दिनका 12:15 बजे के समयमा सड़क सञ्चालन मैलखो याकरसँग पोखरा से नारायणगढ़ उहर ऐना व नारायणगढ़ से पोखरा उहर जैना सवारी तथा धुवानी के साधन गन्तव्य उहर आवत जावत करतीरहलबाट लगातार के वर्षा से करबेर पृथ्वीराज मार्ग के मलेखु मुगलिङ सड़क खण्डके विभिन्न 11 ठाउँमा पहिरो खस्कन सड़क अवरोध हुइल्बा नागढुङ्गा मुलिङ सड़क आयोजना पश्चिम खण्डके सूचना अधिकारी इन्जिनियर सर्विन्द्र मिश्रके अनुसार यी सड़क खण्डके शीतल बजार मन लेडो रूखवा सहितके पहिरो खसलबा कलसे सड़क छेउ मन भाष खन गैलबा बेनीघाट बजार लगके गोमती खोलुवा मन लेडो सहितके पहिरोके कारण सड़क एकतर्फी सञ्चालनमा आइलबा कृष्णभीर उपर से लेडो सहितके पहिरो खस्क सड़क अवरोध हुइलबा सूचना अधिकारी मिश्रके अनुसार ज्यामीरे घाट चौकी भीरमना ढुङ्गा लेदो सहितके पहिरो खस्कन सड़क अवरोध हुइल्बा कलसे हुग्दी खोलुवाके जवाङ खोलुवासम्मके क्षेत्रमा ठाउँ ठाउँमा ढुङ्गा सहितके छुटी छुटी पहिरो खसल्बा फ्लिस्लिङ आसपास स्थित विभिन्न 3 ठो स्थान कैकन करिब 200 मिटर सड़क मन ढुङ्गा लेडो ओ रूखवा सहितके पहिरो खसल्बा कलसे 30 मिटर जत्रा सड़क मन आधा भाग सर्कलबा चुब्लिङ टारमा ढुङ्गा सहितके पहिरो खसल्बा धारापानीके 2 ठाउँमा कैकन करिब 50 मिटर सड़कके आधा भाग भटकलक सूचना अधिकारी मिश्र जानकारी देलबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशके अधिकांश क्षेत्रमा सामान्यतया वर्षा हुइटिरहलसेफे भारी जोखिम तर्तिगेल्बा अतरिया स्थित नेपाल मौसम विज्ञान फील्ड सहायक कार्यालयके अनुसार बंगालके खाड़ीमन विकसित न्यूनचापीय प्रणालीके प्रभाव धीरेसे कमजोर बन्ती जैना क्रममा रहलक उहरसे जोखिम फे घटी जैतिरहलबा यो असोस 9 गतेसे लगातार वर्षा हुइबेर यहाँके जनजीवन प्रभावित हुइलेसे फे भारी जोखिम तर्तिगेल्बा कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर संजय कुमार शाह आज दिन थेसे न्यूनचापीय प्रणाली धीरेसे कमजोर बन्ती गैलक उहरसे धीर जोखिम नै रहलसे फे सतर्क रहपना अवस्था कायम रहलक बटुलबाट आज दिनका तराईके 1-2 ठाउँमा भारी वर्षाके सम्भावना रहलसे फे रात थेसे देशभर मध्यम वर्षा कलक हुइना पूर्व अनुमान रहलक उहाँ जानकारी गरेलबाट खोजखबरमा फेरफे विश्राम पाछैनिनीबाटी सुन्तिरही सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
6: टिकापुर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको सम्भावित भारी वर्षा र बाढी सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना आदरणीय नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार आउँदो असोज 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत यस क्षेत्रमा बढ़ी अथवा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ टिकापुर नगरपालिका कर्णाली नदी र स्थानीय नदी कुलाहरूको तटीय क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले अत्यधिक वर्षाका कारण आकस्मिक बाढ़ी डुबान र कटानको उच्च जोखिम देखिएको छ तसर्थ धनजनको क्षति हुन नदिन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा विपद व्यवस्थापन समिति हार्दिक अपील गर्दै निम्न बमोजिम सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्दछौ मुख्य सावधानी तथा पूर्व तयारीका उपायहरू नदी किनारमा नजाउ बाढ़ीको समयमा माछा मार्न काठ दाउरा संकलन गर्न वा पौडी खेल्न कर्णाली नदी र स्थानीय खोला खहरेहरूमा नजाउ महत्वपूर्ण कागज तथा सामान सुरक्षित राखौं आफ्नो नागरिकता जग्गाधनी पूर्जा शैक्षिक प्रमाण पत्र औषधि र नगद गहना जस्ता बहुमूल्य सामानहरू वाटर प्रुफ झोलामा राखेर घरको सुरक्षित वा अग्लो स्थानमा राखौ बाली नाली भित्राउन हतार नगरौं धान भित्राउने मौसम भए तापनि मौसमको यकिन नगरी कृषि कार्य नगर्नुहोला काटेको धान भए तत्काल सुरक्षित ठाउँमा सारौं होचो स्थानमा व्यवसाय भएका व्यवसायीले सुरक्षित स्थानमा सामानको व्यवस्थापन गरौं विशेष वर्गको ख्याल राखौं बाढ़ी वा डुबानको जोखिम बढेमा घरका वृद्ध वृद्धा बालबालिका गर्भवती महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थान वा सामुदायिक आश्रय स्थलमा लैजाने तयारी गरौं आवश्यक जानकारी तथा सहयोगका लागि वडा अध्यक्ष नगर प्रहरी विपद सम्पर्क व्यक्ति तथा सुरक्षा निकाय र सरकारवालासँग समन्वय गरौं टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली
9: आई हो बड्डो घर कहिया सिज जइबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
10: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
9: मिस्तरान बर्जनाऊ का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
2: यूपीबीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
10: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426
11: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
12: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिवार का दिन
13: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
11: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बडी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन लगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
13: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला
12: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार
14: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजे बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नेछ याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825637772
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा धनगढ़ी स्थित शुभ श्री प्यालेस मन राष्ट्रिय युवा उद्यमी मंच कैलाली के आयोजना मन कर तथा अनुपाल सम्बन्धी जानकारीमूलक लर्निङ इभेन्ट ओराइलबा कार्यक्रम मन आन्तरिक राजस्व विभाग धनगढ़ीके प्रमुख कर अधिकृत भीमप्रसाद काफले प्रमुख अतिथिके रूपमा सहभागी रह कार्यक्रम मन व्यवसाय सञ्चालन कर प्रणाली तथा करदाता पालना कर अपना विभिन्न अवस्थाबारे जानकारी प्रदान कैगिल रह कार्यक्रममा अतिथि वक्ता आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढ़ीके आधिकारिक तर्कराज जैशी व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया मूल्य अभिवृद्धि कर तथा कर विवरण फाइलिङ प्रक्रिया के बारेमा सहभागी हुन जानकारी गरेलबाट उहाँ करछु तथा सहुलियत के लौ व्यवस्था करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम तथा डिजिटल कर प्रणाली के विषयमा समेत चर्चा गर्नबाट उसको कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरता तथा व्यवसाय व्यवस्थापन सम्बन्धी बिक्री देखावती हो नाफा भ्रम हो नगद यथार्थ हो विषय कार्यक्रम पत्र प्रस्तुत गर्ती चार्टर एकाउन्ट टेक्रास पनेरू कागजी नाफा देखिलसेफे नगद संचित ओ सही तरलता व्यवस्थापन न्युबियर भारे कम्पनी समेत दामाशाही मना पर्ना जोखिम रहलक बटविलबाट बिक्री ओ नाफा से कलक व्यवसाय के वास्तविक अवस्था नै देखेन उल्लेख गर्दै उहाँ उधारो असुली मौजदात स्टक व्यवस्थापन ओ बलगर आन्तरिक लेखा प्रणाली बिना व्यवसाय न डिगो बनाई निषेध जिनामन जोर देलबाट उहाँ कर सम्बन्धी पाचक अत्यावधिक व्यवस्था कर अनुपालन तथा कर योजना के विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्ल कार्यक्रममा कैलालीके सदस्य हुकन के संग एसपीए कलेज मन अध्ययनरत विद्यार्थी तथा धनगढ़ी के विभिन्न कलेज में अध्ययनरत विद्यार्थी हुकन के उल्लेख्य उपस्थिति रह कार्यक्रम विद्यार्थी तथा युवा व्यवसाय हुकन कर प्रणाली व्यवसाय दर्ता फाइलिंग कर अनुपालन तथा डिजिटल ओ कर सेवा सम्बन्धी व्यावहारिक जानकारी प्राप्त कर सहयोग पुग्न आयोजक जनैलबा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना एक्याप छुट्टी दूरी बाहेक रूट मन पदयात्रा मन नेङना पर्यटकन अनिवार्य गाइड सहित यात्रा कर अनुरोध गर्लबा बाढ़ी ओ पहिरो के कारण एक्याप क्षेत्र मन जोखिम देख गिल्बा सोही कारण संरक्षण क्षेत्र भित्तर के यात्रा में अनिवार्य गाइड लैजाई कई गिलख पर्यटकन इजाजत प्राप्त गाइड के साथ मन घुमघाम मन जाई अनुरोध कई गिल्बा जोमसम मुक्तिनाथ ढाडुङके लागि यी अनिवार्य

0: सड़क संचालन में पिथरी राजमार्ग फे आज संचालन में सुदूरपश्चिम कमजोर बंटी न्यून चापीय प्रणाली घटल भारी वर्षा की संभावना राष्ट्रीय युवा उद्यमी मंच कैलाली के कर अनुपालन संबंधी लर्निंग इभेन्ट ओराइल लिता बक्ला थारू भाषा खोज खबर अत्र औरत समाचार छ बजे नेपाली भाषा मना खोज खबर सुन सेक्बी अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी यहाँ धन्यवाद देती मई गीता फे बिदा हेतु सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।
1: लक्की ट्रेडर्स टीकापुरमा एनटीसी र एनसीएल को सिम कार्ड ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी लिमिनेसन प्रिन्ट ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
2: हराएको मोबाइल एमडीएफ प्रणाली द्वारा दर्ता र मोबाइल का सम्पूर्ण पार पुर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनेटमा पासपोर्ट साइज को फोटो निकालिन्छ। मोबाइल में फोल्डर हालने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
1: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा संचालक खगेन्द्र चौधरी सम्पर्क नम्बर 9868551000।
3: पढाई छुट्यो साथी छुटे सबै

0: भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: कागजात हराएको सूचना। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का कमला सुडारीको पासपोर्ट कक्षा 8-10-12 का मार्कशीट लगायतका कागजातहरू शुक्रबार दिउँसो 12 बजेतिर टिकापुर खडकचोकदेखि जमरा पारी पेट्रोल पम्पसम्म जाने क्रममा बाटोमा हराएकाले पाउनुहुने महानुभावहरूले यहाँ दिएको फोन नम्बर वा सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएममा बुझाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। पाउनुहुने महानुभावहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। सम्पर्क नम्बरहरू 97-64-26-70-90 र 98-15-60-66-05।
3: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दी गज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइन आउने न पट्टा नि पैना त
4: अधि गहना बनाइन त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ।
3: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाएको आन्छे कि कत्रा सुघर बनाएको अनला बाटी
4: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाई आऊ जाइका हुँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चोक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
3: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए। मोबाइल नंबर 98-6-84-41-208 ओ 98-4-86-39-261।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: अरेल्ला सुनचाँदी पसलमा छड्की तिलहरी, माइली तिलहरी, रानी हार, हार, मंगलसूत्र, चपकी, पेन्डल, बाला, औठी, चन्द्रमा, काँटा, नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
2: अरेल्ला सुनचाँदी पसल बलभद्र चौक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि, संचालक खुमराज सुनार, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।

0: फुका पिएर कभी पेन्सिल कबू झोल फटाका आजी काकना हो काकना हो बाबा फिर उष्ट पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेन्सिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का ट्रस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है।

0: अत्यन्त जरूरी सूचना मिति 2083 साल असोज 9 गते से 11 गते सम्म जानकी गाउँपालिका के क्षेत्र मन बाढीकै जोखिम रहल कुइलक वर्षे सक्कु गाउँपालिका वासी हार्दिक अर्जी गरती आपन खाद्यान्न सामग्री महत्वपूर्ण कागजात नगद तथा जिन्सी सामान लत्ता कपड़ा दवाई लगायत के अत्यावश्यक सामान सुरक्षित ठाउँ मन धर्बी घर व आन्दर पान्दर के अवस्था जोखिमपूर्ण हुइसेकना हुइलक वर्षे आवश्यक सतर्कता अपनाकन सुरक्षित ठाउँ मन बैठक लागि अनुरोध गरती सम्भावित बाढी के जोखिम हुन मध्यनजर गर्दी समयमा सुरक्षित रही सतर्क रही वो एक और जान हुन सहयोग गरी जानकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका के कार्यालय दुर्गौली कैलाली।
1: मलाई के भयो?
2: नरौ नानी नरौ, किशोर अवस्था आएपछि महिनावारी हुनु त प्राकृतिक धर्म नै हो नि।
1: अब म कहाँ बस्ने त?
2: कहाँ बस्ने? मैसँग बस्छस् नि।
1: अनि स्कुल कसरी जाने त?
2: चिन्तै नगर, जसरी हिजो अस्ति गएकी थिइस् त्यसै गरी जाने।
1: अनि अब मैले गुड जानु पर्दैन नि बजै?
2: मलाई सब कुरा थाहा छ, हामीले त दुःख भोग्यौं भोग्यौं, अब तिमीले भोग्नु हुँदैन नानी। हाम्रो पालामा न ज्ञान थियो, न आजकलका जस्ता प्याड गज पाइन्थे, न शौचालय नै थिए, न नुहाई धुवाईका लागि धारा हुन्थे। अब त त्यस्तो छैन नि।
1: आहा, मेरी बुझी कति अनुभवी है।
3: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीनबाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यमबाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यमबाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दन्त रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बाल बालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-38 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।
3: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: कपड़ाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटी सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
1: एल्भिस एल्भिरा ट्रेडर्स, सिद्धार्थ चोक गालप सुपर मार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली, संचालक सुजिता श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9811638387।
2: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ज।